अपनी खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़ियां ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा ए, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा ए। मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा ए।

0: रचना जी गल सुन दिलिए, ध्यान नाल गल सुन मेरी दिलिए, एडी छेती छड बैठी दिल दिल
1: कवि ते रसोईये नू बुरा ना बोलिए, फड़ लिये तकड़ी ता पूरा तोलिए, और जिन्ना चिर घरे ना ले आइए डोले नू, के बैजा कर छड़िए बचोले नू, के बैजा कर छड़िए बचोले नू। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गुरजीत जी थी, ते तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज।
2: जिंदगी नामा हाले दुनिया, यू आर लिसनिंग नाउ आवर ओन दुआबा रेडियो। Welcome all. Live on Finland time, Monday to Friday, 11 p.m. Indian time, Tuesday to Saturday, 2:30 a.m. Repeat by Indian time, daytime 12. Studio number, +358 44 976 1962. Join us by WhatsApp call and message and call us on Skype, Doaba Radio, PTI. Please like us and follow us on Facebook and download Doaba Radio iOS and Android app. Zindigi Nama, Hal e Duniya.

त्योहार हो मेला लगदी सूरत प्यारी, सब कोई भुल गए सभ्याचार पुराने नू, सब कोई भुल गए विरसा सभ्याचार पुराने नू। अजकल

मन नीमा मत ऊची रख के अपना काज चलाउणा चंगा। गुरबाणी दे बोलां ताई जीवन विच अपनाउणा चंगा। ज्ञान दी जोत जगावण दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा। मगर किसे दे लगण नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा। उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच

के सुटते, प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा, पता न कोई पलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा, की होना कल वेख न सकदा, ताही हिरदा दुखड़े चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, शरणजीत प्रेम हुण विकदा ए, शरणजीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना, तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए।

मैं तेरा पारदानी पानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। आ इक दूजे च समाइए नी आपां दोवें हाणो हाणी।

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।

मंजिल सारी कर लेनी एक दिन आपां दोवां, मैं तेरे हासे आच हसां, तेरे रोने आच रोवां। नी तू ऐसी मन लगी, दिल ना वज गई ठगी।

घट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालो चुप ताई अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

0: हो गया, बरनाला हो गया, साढ़े सारे ही जिलों के विच हरेक जिले विच घट्टो घट्ट दो आईटीआई तो हैगियां ने मिनिमम,
1: अच्छा जी,
0: मैक्सिमम वड्डे जिलों च ज्यादा आईटीआई भी हो सकदियां ने, तां
1: ठीक है।
0: इजीली इहदे विच एडमिशन ली जा सकदी है बच्चों वालों।
1: एक आईटीआई दे विच किन्ने क कोर्स चलते होंगे है?
0: काफी सारे कोर्स तो चल जाते हैं, एक आईटीआई दे विच घट्टो घट्ट तुसी 8 तो 10 कोर्सेज दा लगा के चलो कि चल जाते हैं, अगर वो वड्डी आईटीआई है
1: अच्छा
0: तो उहदे
1: जी,
0: विच काफी कोर्सेज चल पैंदे हैं। ते इहदे विच एक होर भी है चीज के जेकर बच्चे आईटीआई करन तो बाद उन्हां दा इंटरेस्ट थोड़ा बन जांदा है
1: हाँ जी,
0: उद्योगिक खेत्र दे विच, तां ओह अग्गे भी पढ़ सकते ने,
1: अच्छा जी,
0: जिवें जेकर कोई विद्यार्थी 10वीं तो बाद आईटीआई करदा है, ठीक है, आईटीआई 2 साल दी आईटीआई कंप्लीट, आईटीआई किसी भी ट्रेड च कर लैंदा है, मान लो फॉर एग्जांपल उन्हें उहदे विच कर ली है इलेक्ट्रिशियन च कर ली,
1: हाँ जी,
0: तां ओह तो बाद उहदा इंटरेस्ट होर वध गया कि नहीं मैं होर लर्न करना है, होर ज्यादा पढ़ना है,
1: अच्छा
0: तां
1: जी,
0: ओह उचेरी विद्या लई भी अप्लाई कर सकदा है, जिद्दां कि ओह पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज आ जांदे आ साडे
1: अच्छा जी,
0: ए, हांजी उहनां लई भी अप्लाई कर सकदा है बच्चे, बच्चे अप्लाई कर सकदे ने ओह
1: इस
0: भी
1: कोर्स
0: दो
1: दे आधार
0: कोर्स।
1: ते, आईटीआई दे कोर्स दे आधार ते फिर पॉलिटेक्निक जिहड़ा डिप्लोमा है ओहदे विच उहनूं
0: हांजी
1: कोई छूट मिलदी है पर सालां दी ओहदी, जां
0: नहीं
1: उन्ने
0: ओ
1: टाइम दे ही करना
0: दे
1: पैंदा है?
0: नहीं नहीं ओहदे विच ओहनूं नहीं छूट मिलेगी, ओह तां ओहनूं कंप्लीट 2 साल दा ही करना पऊगा डिप्लोमा,
1: अच्छा जी,
0: ते पर जेकर ओह डिप्लोमा तो बाद बीटेक कर सकदा है, जिद्दां कि
1: अच्छा जी,
0: अभी सीधे तौर ते अगर कोई विद्यार्थी बीटेक करना चाह रहा है तो ओहदे लिए ओहनूं नॉन मेडिकल लेना पऊगा,
1: हाँ
0: ते
1: जी,
0: उस
1: हाँ
0: तो बाद
1: जी,
0: जेईई मेंस एडवांस वो टेस्ट देने पैणगे, फिर ओहदी बीटेक च एडमिशन हुंदी है। बट जे कोई बच्चा आईटीआई दे थ्रू भी बीटेक च जाना चाहुंदा है तां भी ओह जा सकदा है, इहदे नाल
1: अच्छा
0: की
1: जी,
0: होगा कि आईटीआई दा 2 साल दा कोर्स करन तो बाद ओह डिप्लोमा करूगा पॉलीटेक्निक दा 2 साल दा, ओह तो बाद ओहदी जिहड़ी लेटरल एंट्री हो जूगी बीटेक सेकंड ईयर दे विच,
1: अच्छा जी,
0: हांजी ओह जिहड़े भी ओहने ट्रेड दे विच कीती हुई है,
1: हाँ
0: मान लो
1: जी,
0: ने इलेक्ट्रिशियन च कीती है तां उसनूं उस अकॉर्डिंगली जिहड़ा भी ओहदा स्ट्रीम बनदा होगा ओहनूं बीटेक च एडमिशन मिल जाएगी, ओहदे लिए ओहनूं
1: ठीक है,
0: जेईई मेंस ते एडवांस देण दी जरूरत नहीं पौगी।
1: ओके ओके। अच्छा,
0: हांजी
1: जिहड़े ये कोर्स आपां गल शुरू की पहला भी कीती सी भी, इन्हां नूं प्राइवेट खेत्र दे विच नौकरियां मिलदियां जां सरकारी?
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्कोप है आईटीआई दा,
1: हाँ जी,
0: जेड़े बच्चे आईटीआई होल्डर्स ने उन्हां दा बड़ा स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर च भी हैगा,
1: हाँ
0: गवर्नमेंट
1: जी,
0: सेक्टर दे विच भी हैगा, ते मोर ओवर ओहो अपना खुद दा बिजनेस भी बना सकदे ने,
1: अच्छा
0: ते
1: जी,
0: इस तो इलावा विदेशां दे विच भी रोजगार काफी हैगा है आईटीआई स्टूडेंट्स दे लई।
1: अच्छा जी,
0: ते जदों आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे आं तां जिदा ही मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जिहड़ा साडा
1: हाँ जी,
0: मैन्युफैक्चरिंग दे विच जिहड़ियां आ गईयां चीजां ओह सारे जिन्नियां भी कंपनीज आ गईयां साडियां ओहदे विच बच्चे जाके जिदा टेक्सटाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर, ठीक है, एनर्जी, इदां दे काफी प्राइवेट सेक्टर दे विच जिहड़ियां कंपनीज काम कर रहीयां ने उहनां दे विच काफी डिमांड हुंदी है, वेल्डर दी,
1: अच्छा जी,
0: इलेक्ट्रिशियंस दी, रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशनर जिहड़े मैकेनिक्स हैं उहनां दी बहुत ज्यादा डिमांडिंग ए ट्रेड्स ने
1: अच्छा जी,
0: जिन्हां दी आईटीआई दे प्राइवेट सेक्टर च बड़ी डिमांड रहंदी है,
1: ठीक है,
0: ते ए कंप्लीटली इंटरव्यू बेसिस ते हुंदा है, ते प्लस उहनां दी जिहड़ी हैंड स्किल्स ने उहनां दा जिन्ना हैंड स्किल्स होगा, उहनां नूं एक्सपीरियंस होगा किन्ना, तां उस बेसिस ते उहनां नूं नौकरी मिल जाती है।
1: तुसीं गल विदेशां दी कीती है,
0: हाँ
1: विदेशां दे
0: जी
1: विच अग्गे पढ़न लई मौके मिलदे है जां उहनां नूं अग्गे इस कोर्स दे आधार ते उत्थे जाके कम्म मिल जांदा है?
0: नहीं कम मिल जाता है बेशक उन्हां नूं रोजगार मिलता है विदेशां दे विच,
1: अच्छा जी,
0: जिवें असीं जदों गल करदे आं जिहड़े आईटीआई होल्डर्स ने इन्हां दा मिडल ईस्ट कंट्रीज जिन्हां नूं असीं गल्फ कंट्रीज भी बोल दिंदे आं उन्हां दे विच बड़ी डिमांड है, जिदां सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया,
1: हाँ जी,
0: बहरीन हो गया, कतार हो गया, ओमान, इदां दे जिहड़े गल्फ कंट्रीज है उन्हां दे विच बड़ी ज्यादा मात्रा दे विच वैकेंसियां निकलदियां ने
1: अच्छा जी,
0: आईटीआई होल्डर्स दे लई। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਰਓਵਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਰਕਿੰਗ